नमस्कार दोस्तों, डोगरी रेडियो सुनना माता माता स्वागत है। ते मैं यहाँ डोगरन सोल नेहा शर्मा दे आई हूँ डोगरी रेडियो। ते आज मैं तुसी लगी हूँ सुनान डुगर प्रदेश दे डांस। जियां कि हर प्रदेश का कोई ना कोई फोक डांस होंदा है, उआं गे इत्थे भी कुछ फोक डांस होंदे ने। जेड़ा सारे फोक डांसी कोला जेड़ा सब तो मशहूर डांस है फोक डांस, वो है कुड डांस। ते बाकी और जेड़े फॉर्मन डांस दे उन फुमनी, चौकी, भांगड़ा, गिद्दा, किकली, ढोल डांस ते कन्ने के कन्ने जागरण। ते ये है कुछ जेड़े फोक डांस डुग्गर प्रदेश च होंदे। तो सुनो इस एपिसोड का एक गीत।

वेलकम बैक दोस्तों, डोगरी लेडीज तुंदा मता मता स्वागत है। मैं यहाँ डोगरन सोल नेहा शर्मा ते अस गल करा दे डुग्गर प्रदेश दे नृत्य दे जो इत्थे दे फोक डांसेस ने जिंदे च मैं जेड़ा पर्सनली पसंद है ते जो कि बड़ा गे अट्रैक्टिव ते बड़ा गे मशहूर डांस है वो है कुड डांस। कुड डांस जेड़ा है वो स्पेशली किया जाता है देवते की स्तुति दे टाइम या फिर खेती दे टाइम हार्वेस्टिंग दे टाइम ते कुछ मेले भी ये ने जिथे जरूर एक कुड डांस परफॉर्म होंदा है। कई ऐसे त्यौहार ने विसाखी का त्यौहार है लोहड़ी का त्यौहार है उस टाइम पर भी ये परफॉर्म किया जाता है कुड डांस। लोग अपने अंदर की जिहड़ी खुशी है वह व्यक्त करते हैं इस डांस के जरिए देवते की स्तुति करते हैं इस डांस के जरिए। ते कन्ने के कन्ने एक अलग तरह की ड्रेस होंदी है जो इस डांस करने को पहले लोग वेयर करते हैं। ये डांस बेसिकली मेल डोमिनेटिंग डांस है। वैसे तो अजकल कुछ कॉलेज स्कूल कोरियोग्राफर्स की करते हैं ये विच कुड़ियाँ भी करुट दे नैट पर एक टिपिकल जेड़ा डांस है फोक वो मेल डोमिनेटिंग डांस है जिदे जिन्ने भी भाई ने वो सैमी सर्कल ते फुल सर्कल च घूमते हैं गोल गोल कुछ स्टैप करते हुए बड़े हल्के हल्के मिठे मिठे स्टैप करते ने ये ते स्टैप करते करते जेड़ा ये डांस का रिदम होंदा है उहदे कन्ने कन्ने इंदी जिहड़ी लय है वह बढ़ती ते घटती है। ये डांस किया जाता है एक स्पेशल तरह के जो डोगरी इंस्ट्रूमेंट्स होंगे ने उनके कन्ने ते कन्ने के कन्ने बांसुरी दी ते ड्रम दी आवाज़ ढोल दी आवाज़ भी बिच शामिल की जाती है। बड़ा ही अलग तरह का कुड डांस का म्यूजिक होंगे जो कन्ने ही सुनेंगे बड़ा अच्छा लगता है ते इहदे पर बड़ी मिठी मिठी डांस की लय बनती है। तो सुनो अगला गीत।

सुना दे दुग्गा प्रदेश दे कुट डांस दे बारे च मेरे द्वारा में या डोगरन सोल नेहा शर्मा ते ए जियां कि मैं तुसीं दस्या नाग देवता दी स्तुति च भी ए किता जांदा है ते जम्मू प्रदेश दे जेड़े कि पहाड़ी इलाके नूं उत्थे ज्यादा किता जांदा है भद्रवाह होया मानतलाई होया पर अजकल कुछ लोग ब्याह शादियों च भी स्पेशल अट्रैक्शन वास्ते कुट डांस ट्रुप ही इनवाइट करते ने ते अपने कल्चर ही प्रमोट करते ने कुसे ना कुसे बहाने करने तुस भी यूट्यूब लिंक पर चेक करी सकते हो कुड डांस ते उत्थे तुस देखी सकते हो कि कितना अच्छा एक वाइट कलर दी ड्रेस होंदी है जेड़े सारे मेल पांदे न चूड़ीदार जेड़ी डोगरी साड़ी ड्रेस है चूड़ीदार पजामी ते कन्ने एक उपर एक कमीज पांदे ने गोल पूरे इंदी जेड़ी अटायर होंदी है वो चिट्टे रंग दी होंदी है ते कन्ने के कन्ने पिंक या लाल रंग दी ये ओदे उपर कुछ चुन्नी टाइप कुछ बंदे न ते बड़ा गे अच्छा लगदा है सारे एक ड्रेस सैमी सर्कल ते सर्कल च घूमदे ते म्यूजिक दी जेड़ी मिठी मिठी लय है बड़ा गे अच्छा समा बनांदी है हुन मेरा भी टाइम होई दा जाने दा ते तुस मी भी इजाजत दियो मैं फिर परती आगी टिल देन बाय बाय नमस्कार दोस्तों।

0: 1-800-926-9257.
1: पिछले 18 सालों तो मॉर्गेज दिया सेवावां देंदे आ रहे अकाल मॉर्गेजेस इंक नाल कम कर दे दविंदर पवार
0: Second, third mortgage, home equity, business loan, debt consolidation, refinance, rent to only. Call karo Devinder Pawar nu 647-988-8731. 647-988-8731.
1: Je nahi hona khajjal khwar, ta call karo
0: Devinder Pawar.
1: Jekar ek var ina tuhadi file vekh ke ha keh ditti, ta apne vaade te hamesha khare utar de han. License number 10845. Independently owned and operated.
2: Ladies and gentlemen. You are not ready for this.
3: पर हुन थोनू कार लेन ली रेडी करनगे मॉर्गेज द किंग गिरीश शर्मा
4: रेजिडेंशियल कमर्शियल रीफाइनेंसिंग डेट कंसोलिडेशन सेकंड थर्ड मॉर्गेजेस प्राइवेट फंड्स
3: सब ले याद रखो गिरीश शर्मा प्री अप्रूवल ही नहीं क्लोजिंग तक देंगे पूरा साथ डीलिंग विद ऑल बैंक
4: कॉल 647-606-8110
3: और विजिट sharmamortgages.com
5: ट्रक एक्सीडेंट ते रब ने हाथ देके बचा लिया
6: ते कार दे खर्चियां नु हरजीत जंजुआ दी डिसेबिलिटी इंश्योरेंस ने संभालिया अपने भविष्य नु सुरक्षित करन ते प्रेजेंट दे पीस ऑफ माइंड ली आज ही संपर्क करो हरजीत सिंह जंजुआ
5: हर तरह दी वधिया इंश्योरेंस पॉलिसी ले याद रखो इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट हरजीत जंजुआ दा नाम लाइफ इंश्योरेंस डिसेबिलिटी क्रिटिकल इंश्योरेंस सुपर वीजा इंश्योरेंस विजिटर इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस किड्स प्लान आरआरएसपी आरईएसपी टीएफएसए कॉल करो
6: 6475294-647-825-5294
7: ਪਾਜੀ ਅੱਜ ਘਰੇ ਤੰਦੂਰੀ ਬਣਾਓ ਪਰ ਜੋ ਸਵਾਦ ਤੰਦੂਰੀ ਬॉयਜ਼ ਦੇ ਆਉਣਾ ਉਹ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਉਣਾ
6: ਹਾਈ ਗਾਇਜ਼ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਤੰਦੂਰੀ ਬॉयਜ਼ ਵੈਜ ਨਾਨ ਵੈਜ ਸਵਾਦਲੇ ਤੰਦੂਰੀ ਖਾਣੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੋ ਤੰਦੂਰੀ ਬॉयਜ਼
7: ਸਾਂਝਾ ਵਿਰਸਾ ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇਣ ਤੇ ਪਾਓ 10% ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਪਾਠ ਜਾਗੋ ਅਤੇ ਵੈਡਿੰਗ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਕੇਟਰਿੰਗ ਬੁੱਕ ਕਰੋ 9059562111 9054519200 ਸਰਵਿੰਗ ਯੂ ਫਰੋਮ 3 ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ
6: शादी दी मूवी बनवाउन ले या रिंग सेरेमनी ले वेडिंग एनिवर्सरी जागो प्री वेडिंग बर्थडे और एनी इवेंट दी वधिया वीडियोग्राफी ते फोटोग्राफ शूट कर ले याद रखो देसी सिनेमैटिक फिल्म अपने हाई एंड इक्विपमेंट्स ते क्रिएटिव आइडियाज दे नाल बेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड कर देने बुकिंग ले आज ही कॉल करो जगदीश सिंह नु 416-930-1251 416-930-1251
8: ਵੱਡੇ ਵੀਰੇ ਚੰਗਾ ਟਰੱਕ ਤੇ ਵਧੀਆ ਜੌਬ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ
9: ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕੁਆਲਟੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਕੁਆਲਟੀ ਟਰੱਕ ਸੇਲ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾ 12 ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਪਾਓ ਤੇ ਨਾਲੇ ਚੰਗੇ ਡਾਲਰ ਕਮਾਓ
6: ਕੁਆਲਟੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਇੰਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਹੈ ਕਾਬਲ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਸ ਟਰਾਲਾ ਡਰਾਈਵਰਸ ਤੇ ਓਨਰ ਆਪਰੇਟਰਸ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕੁਆਲਟੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਇੰਕ ਦੇ ਜਸਵੀਰ ਹੋਰਾ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ
9: 416-717-2929
6: 416-717-2929 ਕੁਆਲਟੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਇੰਕ 14 ਸਟੇਨਵੇ ਬੁਲੇਵਰਡ ਯੂਨੀਫੋਰ ਇਟੋਬੀਕੋ
10: स्टीफन फर्नीचर की धमाकेदार फेस्टिवल सीजन सेल इस साल फेस्टिवल सीजन में अपने घर को भी जरूर सजाइए अपने मनपसंद बेस्ट क्वालिटी हाई एंड ब्रांडेड फर्नीचर पे कोई भी रीजनेबल ऑफर एक्सेप्टेबल होगा तो फिर आज ही स्टीफन फर्नीचर आए और अपने घर को स्टीफन फर्नीचर के बड़े बड़े ब्रांडेड फर्नीचर पे बड़ी बड़ी डील्स का फायदा जरूर उठाएं सर्विंग सिंस 1992 फाइनेंसिंग ऑप्शन अवेलेबल टू लोकेशंस टू सर्व यू 2575 स्टील्स एवेन्यू ईस्ट ब्रैम्पटन 905-790-0560 6 Marconi Code Bolton 905-951-9394 Stephen Furniture ki dhamake dar festival season
11: ਸਾਂਝਾ ਵਿਰਸਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਵਿਰਸਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 647-5594-647-835-5294 ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

0: एक्सपर्ट।
1: हाँ हाँ एक्सपर्ट हैं, एक्सपीरियंस्ड एंड अप्रोचेबल ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड, प्रोफेशनल ट्रेनिंग, लीड जनरेशन सिस्टम, पैसिव इनकम प्रोग्राम फॉर रियल्टर्स, फ्री एडमिन सपोर्ट, हायरिंग फुल टाइम एंड पार्ट टाइम रियल्टर्स। कॉल 416-823-9505 और विजिट summitrealtyexperts.com। Summit Realty Expert।
2: इंश्योरेंस किस तो करवांदा यार?
3: कला मैं नहीं, अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मेंगी जी को करवांदे ने।
2: वाह यार, नंबर तो दई मोना जी दा।
3: हां जी, तुसी भी नोट करो, इंश्योरेंस कोई भी होवे,
4: इंश्योरेंस फॉर यू दी।

0: Brampton, Mount Nash and Bovedda intersection या विजिट करो www.tawakitchen.ca 905-790-1699 905-790-1699 TAWAKitchen.ca।
1: टैक्स का सीजन आ चुका है, पुराने अकाउंटेंट नाल खुश नहीं हो या टैक्स दे विच थोड़ियां बचत किथे होईयां हैं, केड़े केड़े लिमिट्स तुहाडे लई सरकार ने सैट किते हन, लोन मिल सकदे ने जां किते भी थोड़ी कंपनी दी शेप किस तरह होनी चाहीदी है। पंजाब टैक्स सॉल्यूशन दे जगजीत साचा जी मिसिसागा ते कैम्ब्रिज दीयां दो लोकेशन तो नवीयां फाइल्स इत्थे लै रहे ने, उत्थे तुहानूं सुचेत करदे हन आउण वाले समें लई। टैक्स दीयां सर्विसिस लई पंजाब टैक्स सॉल्यूशन 416-720-3642 416-720-3642 पंजाब टैक्स सॉल्यूशन।
2: ओ यार बिजनेस का माड़ा हाल होया पे, कितनी तरकीबा लगा चुका पर फिर भी कोई गल नहीं बन रही।
3: निर्बल बाबे ने कहा से कृपा हो जाओगी, नींबू मिर्चा टंगो, पर कृपा तो हो ही नहीं।
4: ऑनलाइन भी मार्केटिंग करके देख ली पर कोई रिजल्ट ही नहीं आया।
5: एदा मतलब तुसी रेडियो आवाज ट्राई नहीं कीता।
6: रेडियो आवाज, रेडियो आवाज रोजाना सवेरे 9 to 10 बजे तक, एवरी सैटरडे 10 to 1 बजे तक प्राइम टाइम ते। वधेरे जानकारी लई तुसी कॉल कर सकते हो 416-518-3200।

0: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਣਤਾਸ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਸ ਤੱਗੜ ਦੇ ਨਾਲ।
1: Disclaimer, the content shared on this radio show is for informational and entertainment purpose only. The hosts are not liable for any actions taken by listeners or callers based on the information provided. Enjoy.
2: जी हाँ, मोटर कार का तो मालूम नहीं, लेकिन आपको आपके बंगले तक पहुँचाएंगे जी यानी मॉर्गेजेस के मयंक भटनागर जी। हर तरह की मॉर्गेजेस में करते हैं स्पेशलाइज, वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, प्राइवेट हो, फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेजेस, और या फिर आप हैं फर्स्ट टाइम होम बायर। मयंक भटनागर जी 6477022023 647 702 V23 license number 10394।
3: मैं नवा कार लिया है, तेनु पता है प्रॉपर्टी इतनी महंगी है, नाले मैं एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लई है, एक बाई मैं बेसमेंट भी बनाई है ब्रम्पटन वाले घर दी, नाले मैं सोचदा हूं वॉशर एंड ड्रायर भी चेंज कर ही दईए, हुन समझ नहीं आ रहा अप्लायंसेस कित्थों लईए।
4: हो जी, एदे च समझण वाली केड़ी गल है, सारे कम्मां लई इक्को जगह। चलो मिसेस अगर स्टील ते अप्लायंस जंक्शन ते, इना दे प्राइस अते सर्विस नु कोई बीट नहीं कर सकदा। तुसी 6 मंथ तक दी पेमेंट भी बनवा सकदे हो, सारे ब्रांड्स दी ऑथराइज्ड डीलर्स भी ने। मिसेस अगर Appliance Junction, call 905-450-0054, 905-450-0054.

0: रात में छड़ दिनी आ पर जनाब चले किथे हो
1: मैं चलिया स्काईडम ऑटो एंड बॉडी सेंटर जेडे करदे ने मेरी कार दी केयर बेस्ट सर्विस ते फुल रिपेयर
0: ए होई हन स्काईडम ग्रुप ऑफ कंपनीज जेना दिया जीटीए दे विच चार लोकेशना ने मेरी फ्रेंड अनु दी एक्सीडेंटल कार भी फिक्स करके नवी बनाती सी
1: जी हां कारा दे नाल नाल बसा अते बड़े ट्रका दी हर तरह दी रिपेयर अते बॉडी वर्क दा काम भी कीता जांदा है फ्लीट वास्ते बेस्ट पैकेज प्रोवाइड कीते जांदे ने बतेरी जानकारी लई कॉल करो 905 874

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री दी तक गाले कुछ रे तुम्हा भैया जे चारे पासे तुसी भी आओ 1850 Albion Road in Rexdale 416-213-1165
1: रोकी तू अपनी इंश्योरेंस किस तो करवांदा यार
2: ओए कल्ला मैं नहीं अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मेंगी जी कोल करवांदे ने
1: वाह यार नंबर ता दई मोना जी दा
2: हां जी तुसी भी नोट करो इंश्योरेंस कोई भी होवे
3: इंश्योरेंस फॉर यू दी मोना मेंगी जी
2: जेडे लाइफ इंश्योरेंस क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस सुपर वीजा इंश्योरेंस अते हर तरह दी इंश्योरेंस दे लई भरोसेमंद नाम है हुणे कॉल करो 416-509-1509 ते
3: याद रखो मोना मेंगी फ्रॉम इंश्योरेंस फॉर यू
2: 416-509-1509
3: और visit insuranceforyou.ca.
4: Kataria Tours and Travels located near 2883 Derry Road East Upper Airport and Derry the intersection upper to see cheap flight tickets ni pal de vichon Toronto to Delhi Delhi to Amritsar de route options sunu chahide ne ja tusi visa services ni pal de vichon puri family vacation upar jaan di soch rahe ne jithe tanu all inclusive vacation packages vi milde ne pahunchna va ji Kataria Tours and Travels Airport and Derry the intersection upar call kar sakde ho 905-678-1200 905-678-1200 Kataria Tours and Travels Airport and Derry the intersection over
5: नजर बदलो नजारे बदल जाएंगे आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज
6: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा कॉल 905-460-8888 दैट्स 905-460-8888
5: सर्विंग फ्रॉम टू लोकेशंस बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ
7: नोबेल फ्रेश फूड शहर विच इको दौरा पै गया टॉप क्वालिटी ते लो लो प्राइसा विच नोबेल फ्रेश फूड फेर नंबर ले गया आटा दाल चावल आले सब्जी ते दूध क्यों सब मिलेगा नोबेल फ्रेश फूड 2945 सैंडलवुड पार्कवे ईस्ट दूसरी लोकेशन 20 ग्लिंगहम ड्राइव इन ब्रैम्पटन फोन 289-801-0566 नोबेल फ्रेश फूड
8: जे मैनू यार ना मिले ते मर जावा जे मैनू प्यार ना मिले ते मर जावा
9: What's up everybody, this is Jasmine Sandler ते तुसी सुन रहे हो वतनों दूर with सुखी निजर

0: अजी आओ 170 गिलडन रोड जी नंबर 17 170 गिलडन रोड जी नंबर 17 टेलीफोन नंबर 6473021322 6473321322 6473321322 जेलो टायर सेंटर
1: ते डरेवरी सूट कर दिया जट्टानू
2: अजी घरे दे वासी गल नहीं है।
3: Simply Indian brings you all simply delicious deals. Buy one, get one free every day. Surya Dasko Sham Satoja Tak on dining and takeouts. Mazala Vo Sunday Nu Paratha Plate. Monday, Manpasand Kulcha Plate. Tuesday, Chana Bhatura. Wednesday, Lajwab Veg Thali. Thursday, Yummy Haka Thali. Friday, Mazala Vo Saag Makki Di Roti Da. A yummy deals is Simply Indian. This Sariya Hi Locations Day. Dining, takeout and catering also available. Call at 9057948111. Simply Delicious. Matlab, Simply Indian.
4: ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਲਈ ਮੋਰਟਗੇਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਫਰਸਟ ਔਰ ਸੈਕੰਡ ਮੋਰਟਗੇਜ ਪਰਚੇਸ ਔਰ ਰੀਫਾਈਨਾਂਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫੰਡਸ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ
5: ਤਾਂ ਫਿਕਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ
6: ਨੀਲਮ ਸੈਡੋਫ ਕੋਲ ਹੈ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਫਾਰ ਐਵਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ
4: ਇਹ ਆਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੈਸਟ ਰੇਟਸ ਇੰਪੇਅਰਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਹੈ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ
6: ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਏ ਬੀ ਐਂਡ ਟ੍ਰਸਟਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਂਡਰਸ
4: ਯੂ ਸ਼ੌਪ ਅਰਾਊਂਡ ਐਂਡ ਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਨੀਲਮ
6: ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਨੀਲਮ ਸੈਡੋਫ ਨੂੰ
4: 647-7710-647-739-8710 लाइसेंस नंबर M200-3450
7: कनेडा विच रहंदे हुए हर परिवार को लाइफ इंश्योरेंस होनी बहुत जरूरी है अपने परिवार दी फाइनेंशियल सिक्योरिटी ते फ्यूचर प्लानिंग लई
8: इसे लई मैं अपनी ते वाइफ दी इंश्योरेंस पॉलिसी प्राइम इंश्योरेंस ते सिमराज सिद्धू तो ही करवाई है
9: जेकर तुसी भी किसी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस मॉर्गेज इंश्योरेंस डिसेबिलिटी इंश्योरेंस क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस बारे सोच रहे हो ता सब तो वद कवरेज ते सही पॉलिसी तुहानू सिमराज सिंह सिद्धू ही दवा सकते ने पेरेंट्स लई सुपर वीजा इंश्योरेंस या विजिटर वीजा इंश्योरेंस दी बेस्ट कोट लई हुणे कॉल करो 416-453-3381 ते 416-457-3381
7: नाली जेकर तुसी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी पहले ही ली हुई है तो तुसी बहुत ही ज्यादा पैसे पे कर रहे हो बिल्कुल फ्री विच पॉलिसी रिव्यू करवा के तुहाडे पैसे बचाओगे हुने ही सिमराज सिंह सिद्धू नु कॉल करो 416-457-3381 416-457-3381
10: यह है टोरंटो द हरमन प्यारा रेडियो देश परदेश देश परदेश
11: फॉर एडवर्टाइजमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन
10: इंफॉर्मेशन
11: कॉल अस नाउ 416-457-3381 416-457-3381 या फिर 416

0: What is the reason?
1: This is the effect of famous masala chai by Navigator's Cafe.
0: I know this place. They're also famous for delicious snacks like aloo patties, samosa, vada pav, spring rolls, mango lassi, and my favorite, samosa chaat and bhel.
2: Navigator's Cafe, located at northwest corner of Queen Street East and Airport Road in Brampton. They are conveniently open 24/7.
3: डाइवोर्स या कस्टडी दी लड़ाई जिंदगी दी सब तो औखी लड़ाई हुंदी है क्योंकि तुसी उस शख्स नाल लड़ रहे हुंदे हो जिस नाल तुहाडा घर परिवार ते तुहाडे बच्चे सांझे ने उस वक्त कई सवाल उठते ने कि प्रॉपर्टी किस कोल जाएगी कस्टडी किस नु मिलेगी ते जिंदगी दी सब तो प्यारी दौलत बच्चे किस कोल रहनगे
4: S&S Lawyers को इन सारे सवालों दे जवाब ते तुहाडे हक ले लड़न वास्ते लियाकत है अपने हक जानन ले या सलाह लेन ले आज ही S&S Lawyers नु कॉल करो 416-655-2000
5: जे तुसी भी करना चाहुने हो अपना खुद दा रेडियो प्रोग्राम ता आज ही सानू कॉल करो 647-504-1557 टेक स्पिरिट हजे तक भी तुसी अगर अपने सिक्योरिटी कैमरे नहीं लगवाए ता बिजनेस या रेजिडेंशियल अपने करने लई सिक्योरिटी कैमरे रिकॉर्डिंग अते दुनिया भर दे विच किते भी कैमरे चेक करो अपने फोन दे राही टेक स्पिरिट 905-621-4100 तुसी होम ऑटोमेशन कोई भी करवानी है तुसी अगर करे अपना होम थिएटर होम सिनेमा तैयार करोना वेरी प्रोफेशनल टीम टेक स्पिरिट 905-621-4100 905-621-4100 ते फोन जरूर करो ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 647-504-1557 ਜਾਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪੇਜ ਤੇ।

एक्सपर्ट हैं, एक्सपीरियंस्ड एंड अप्रोचेबल ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड, प्रोफेशनल ट्रेनिंग, लीड जनरेशन सिस्टम, पैसिव इनकम प्रोग्राम फॉर रियल्टर्स, फ्री एडमिन सपोर्ट, हायरिंग फुल टाइम एंड

0: अभी अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ जरूर आएं। वेज थाली, चना भटूरा, अमृतसरी कुलचे का स्वाद बाय वन गेट वन ऑफर के साथ जरूर उठाएं। फ्रॉम 10 AM टू 8 PM सिंपली इंडियन स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट सर्विंग यू फ्रॉम 3 लोकेशन 15 फेंटर वे 85 मॉन्टपेलियर स्ट्रीट 275 गार्डन ब्रूक ट्रेल इन ब्रैम्पटन।
1: सिंपली इंडियन सिंपली इंडियन सिंपली इंडियन वाले नूं याद जरूर रखो ते थोड़े लिए दो बोल आपां लाउणे आ यार। एक गाना जिन्हों सुने नूं बहुत चिर हो गया थोड़े लिए लाउणे आ ते वारस साहब नूं सुणदे आ नी आजा भाबी बड़ा टॉप दा गीत है। दो बोल सुन के फिर वापस आउणे आ।